आकर खा जाए तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मौजजा भी लाए जो तुम कहते हो, तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको कत्ल क्यों किया?

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: Toot jaate hain dil ishq ke darbaron mein. Laut jaate hain aashiq barf ke angaron mein. सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों

101 FM.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you

मिटक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को खुसूसी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आलमी सतह के बेहतरीन तरीकों को अपनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने बलोचिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से दागे गए इब्तदाई नौयत के 4 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। मौसमियाती तब्दीली के वजीर ने मुल्क के पानी और तवानाई के चैलेंजेस से निपटने के लिए आबी ज़खायर की तामीर पर जोर दिया है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले के न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब 101 FM
3: Hey, we'll be back after this shot.

0: Well, जनाब हेलो अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामीन, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे, बखैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। Well, जनाब हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, एंड यस दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त, योर वेरी ओन आरजे, योर वेरी ओन मुंडा is in the house of FM 101 Lahore.
1: Baby, I love you, I need you, habibi.
0: एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को इस हस्ती मुस्कुराती चेहचेहाती लहलहाती सुबह में खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा, और इस दुआ के साथ कि आपको आपका आज का सारे का सारा दिन भी बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बखैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब हो। जनाब 9:12 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मायारी वक्त, और मेरा आपके साथ रहने का भी, तारीख की बात कर लें तो जनाब आज तारीख हो चली है जुलाई की यकम, जबकि 21वीं सदी का 26वां साल यानी कि 2026 जो है अपने इख्तिताम की जानिब दवा दवा। जनाब शो कॉल्ड सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, पोस्ट अपडेट की जा चुकी है और लिंक भी जो है वो शेयर किया जा चुका है कि किस तरह से अगर आप लाहौर के बाहर से सुन रहे हैं तो आपने हमें लाइव कैसे सुनना है। वेल सबसे पहले तमाम समातों का बहुत शुक्रिया जो कि हमें ऑलरेडी सुन रही हैं, हमें समात फरमा रही हैं, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहचेहाते हुए, लहलहाते हुए, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, खाना खिलाते, चाय या कॉफी पीने के साथ साथ, इस मौसम में भी चाय या कॉफी पीने के साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं, इसका आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं, या अपने अपने कामों में लगे हैं, मगन हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, नींद में हैं, और हमें सुन रहे हैं, तो जनाब आपकी समातों का, आपके ट्यून इन करने का, आपके लॉग इन करने का बेहद बेहद शुक्रिया। मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए, और इस साथ में हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, सब कुछ करेंगे जो कि हम आपके साथ करते रहते हैं और स्पेशली मैं करता हूँ। और तकरीबन एक महीने के बाद आपके साथ मेरी इस मुलाकात का दोबारा से बकायदा आगाज हुआ चाहता है, तो इस मुलाकात को हम क्या करेंगे, यादगार बनाएंगे, खुशगवार बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे और बहुत सारी मोटिवेशन के साथ साथ क्या होगा कि कुछ ऐसे मौजूदात होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हम जेर बहस लाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी बात करेंगे और बहुत सारी दिल की बातें करेंगे, सही है? तो जनाब बिल्कुल, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, तरीका इंतहाई आसान, यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं सो उसके लिए भी आपको नंबर बताया जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी से लाइन में लग जाएंगे। तो 10 बजे के बाद आपकी ऑफ कोर्स जो लाइव कॉल्स हैं वो भी एंटरटेन की जाएंगी। वेल 9 AM और जनाब शो का बाकायदा आगाज करना चाहूँगा एक बहुत ही मज़ेदार से गाने के साथ, आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं पहली दफ़ा। सो पहली दफ़ा बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और अच्छी होती भी हैं, अच्छी लगनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, और बाद में ना बंदा ना तंग आ जाता है, बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि ये ना ही हुआ होता तो अच्छा होता। वेल एक ऐसा ही ट्रैक आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं पहली दफ़ा, मिलते हैं इस ट्रैक उस पास, स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस डोंट क्विट।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें एफ एम 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान कहते हैं, मुझे मुस्तफा कहते हैं। 9:27 हुए चाहते हैं। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को सुबह बखैर जिंदगी, सुबह बखैर लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान। वेल जनाब, आप बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकियात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मदाफात में। वेल, जब भी मौसम की बात की जाती है आपसे हमेशा ये लाजमन कहा जाता है कि असल मौसम जो होता है ना, वो इंसान के अंदर का, उसके मन का, उसके दिल का, उसके अंदर का मौसम होता है। ऐसे ही है ना। सो कोशिश करना मुश्किल है इस मौसम में, स्पेशली जो बेरोनी गर्मी पड़ रही है, इसमें अपने अंदर की गर्मी को कंट्रोल करना, काबू में रखना, यानी कि जज्बात में हिद्दत आ जाती है ना, शिद्दत आ जाती है यार, बंदा ही तपा हुआ होता है। सो ये मामला से हमने गुरेज करना है, बचा के रखना है अपने आप को, और कोशिश करनी है कि अपने अंदर के मौसम को हमने मौसम रखना है। सो अपने मूड को, अपने मिजाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो हैं, अच्छे अच्छे जो मामला हैं, अच्छे अच्छे जो काम हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। वो कोई ऐसा काम हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, नहाना धोना हो सकता है, और इसके अलावा कुछ पका के खा लेना या किसी को खिला देना हो सकता है, किसी के साथ कहीं पे चले जाना हो सकता है। और यकीन कीजिए, मेरे सामने जो सिस्टम पड़ा है ना, इसकी जो क्या कहते हैं, जो इसका वॉलपेपर है, इतना मज़े का है। क्या ही बेहतरीन पहाड़ हैं, क्या ही बेहतरीन बादल हैं, और इतना प्यारा मौसम है। दिल चाहता है कि बंदा ना चला जाए, बस अब किसी ऐसे इलाके में चला जाए जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, अब बारिश हो रही है, और बड़े अच्छे अच्छे मामले आते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, खुशगवार लोग हैं, खुशगवार मौसम का एहसास है। तो आपको बताता चलूं कि हम अपने लोकल जो हमारा मौसम है, इसकी हम बात करेंगे, लाजमन करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि आजकल यूरोप में क्या मामलात हो रहे हैं, स्पेशली जर्मनी, जो बर्लिन है, दारुल हुकूमत है जर्मनी का, वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, 41 से तजावुज़ कर चुका है, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1,000 से 1,200 से ज़ायद अमवात जो हैं वो वहाँ पर हो चुकी हैं। तो गर्मी की इतनी शिद्दत है कि आपको पता होगा कि एक वो वक्त होता था कि जो एशियाई ममालिक के लोग होते थे, स्पेशली हम पाकिस्तानी होते थे, या बहुत ज़्यादा मुझ जैसे अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे कि वो ऐसे ममालिक में जाते थे वहाँ के मौसम से महसूस होने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, और बहुत मज़े मज़े के काम करने के लिए। सो अब इन ममालिक में भी क्या है कि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना कि वहाँ पे जान के लाले पड़े हुए हैं सबको, सब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब बिलकते फिर रहे हैं। सो हम तो इतने आदमी हैं गर्मी के, आप यकीन करें, मैं वीडियोस देख रहा था, मीम्स देख रहा था कि पाकिस्तान में, लाहौर में, स्पेशली मुल्तान जैसी गर्मी में लोग चाय के ढाबों में बैठे हैं, अपनी मंजियाँ डाल के बैठे हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं, और पता क्या कर रहे हैं, इतना ख़तरनाक काम कर रहे हैं, और इस गर्मी में कर रहे हैं वो यही है कि चाय पी रहे हैं, और चाय जनाब बिल्कुल इतनी गर्मी में भी हम लोग पीते हैं, और अच्छी बात है कि पीते हैं। ये हमारा कौमी मशरूब जो है वो कहा जाता है, वैसे तो गन्ने का जो रस है वो हमारा कौमी मशरूब है, लेकिन चाय के तो क्या

वेल, हम बात कर रहे थे यहाँ के मौसम की, लाहौर का मौसम कैसा है और आपके गिरदो नवा का मौसम कैसा है, ये मुझे आपने बताना है। लाहौर का मौसम अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 33 यानी कि 33, और मैक्सिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो 38 होगा जबकि मिनिमम 28 होगा। अभी मैं जब स्टूडियो से आ रहा था तो हल्के हल्के बादल आए हुए थे, हवाएं चल रही थी और मज़े का मौसम था। हर्ब्स की जो शिद्दत रात को थी ना, वो आज मुझे सुबह के इस पहर में कम महसूस हो रही थी। चलिए अच्छी बात है। और कुछ नोटिफिकेशंस मुझे आए हैं कि शाम के औकात में बारिश के इम्कान हैं, हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो होगी। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, हवा में नमी का तनासुब जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है जनाब 63%, और 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज हवाएं चलने वाली हैं। वेल, मौसम आज औसम ही होगा। कल की तरह वो जो एक बहुत ही शदीद हब्स वाला आलम था ना, वो आज हमें कम महसूस करने के इम्कान मौजूद हैं। वेल, बात फिर वही कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अंदर के मौसम का ख्याल रखिए। वेल, 9:31 पे चाहते हैं शामिल कर लेते हैं मौसम ही के हवाले से एक ट्रैक, और इसको रीमेक किया गया है एक नए अंदाज के साथ, इसको दोबारा से क्रिएट किया गया है जनाब हवा हवा और गुलपन्ना हसन जहांगीर की आवाज़ में। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक। इस बार आप इस गाने को सुने, मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, सो इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। 9:37 चाहते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त, और मेरा आपके साथ रहने का भी जनाब स्टूडियोज़ में बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो माहौल है, बहुत प्यारी प्यारी कुर्सियाँ लगी हैं, कुछ नए नए पोस्टर्स मैं देख रहा था यहाँ पे इंटर्नशिप के हवाले से। वो तमाम तर यंगस्टर जो के सेलेक्ट हुए हैं, वो जो कल आए थे और जिनके इंटरव्यूज़ हुए थे, जिन्होंने बात की थी या नहीं भी की थी, अपनी मौजूदगी का एहसास यहाँ पर दिलाया था, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं हैं। और आइए बस यहाँ पर छा जाइए। तो जनाब बिल्कुल, अगर आप भी इस हवाले से, चले ठीक है इस पर हम बात करेंगे, बात कर लेते हैं कल के दिन के हवाले से। जनाब कल सोशल मीडिया का जो आलमी दिन है वो मनाया गया है, सो आज इस हवाले से हम भी बात करना चाह रहे थे सोशल मीडिया के बारे में। हम वही घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे जो कि हम अक्सर करते हैं, सब करते हैं कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा आजकल के दौर में स्पेशली आज की जो नस्लें नो है, जेंजी को काफ़ी जो है ना वो तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जाता है, हमेशा अताब में रहते हैं जेंजी, कि जेंजी ने सोशल मीडिया पे ये कर दिया है, वो कर दिया है, फला मीम बना दी है, फला रील जो है वायरल कर दी है, फला टॉपिक जो है, फला जो स्लैंग है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। हम जेंजी को, यानी कि अपनी नस्ल नौ को, आजकल के बच्चों को, अभी मैं स्टूडियोज़ में जब आया था तो मिस नगमाना मेरी जो प्रोड्यूसर हैं मोहतरमा मौजूद थी यहाँ पर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कल आने वाले बच्चों के हवाले से, स्पेशली नई जो हमारी पीढ़ी है, नौजवान है, मुझसे छोटे बच्चे जो हैं इनकी बात की जा रही थी। वैसे मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, सो उन यंगस्टर्स की बात की जा रही थी। इतने कॉन्फिडेंट और क्या ही बेहतरीन दो टोक जवाब देने वाले बच्चे होते हैं ना आज के। मैं बड़ा जो है ना आजकल के बच्चों से इंस्पायर हूँ। मतलब सोचते हैं नहीं सोचते, बात सही कहती हैं या नहीं कहते, लेकिन बात जैसे कहते हैं वो मायने रखती है, वो अहमियत रखती है। तो वो एक शेर भी है ना कि बात कैसे की जाती है, कुछ इस तरह का शेर है। मैं शेर व शायरी में काफ़ी वो ब्लंट आदमी हूँ, तो अगर किसी को याद है तो सुनाइएगा 10 के बाद, सही है। जनाब इसके अलावा हम बात करेंगे कि 7 तरह के आराम करने के तरीके होते हैं, यानी कि रेस्ट के हवाले से, आराम करने के हवाले से। हमने हमेशा जो हमारा फिज़िकल रेस्ट होता है, यानी कि लेट जाना, सो जाना, इसी के बारे में हम बात करते हैं, इसी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही करके हम समझते हैं कि हमने रेस्ट कर लिया है, हम आराम पा चुके हैं, सुकून हमें आ गया है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना एक वो क्या कहते हैं कि चलो मैं कह देता हूँ, एक ना चुल सी पड़ी होती है कि पता नहीं क्या कुछ मिसिंग है, कोई तिशनगी है, कुछ चीज़ तंग कर रही है। तो गर्मी का मौसम है, बहुत सारे मामला होते हैं, और आज एक डॉक्टर साहब थे मैट ब्रोस के नाम से, सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं और क्या ही बेहतरीन अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो उन्होंने बात की थी कि आजकल के मौसम में स्पेशली वो तमाम लोग, और मैं खुद ज़मीन पे सोने वाला इंसान हूँ, मुझे ज़मीन पे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है, एक तो गर्मी नहीं लगती, जो बेड पे, सोफ़े पे या कुशन पे, किसी भी तरह के मोटे पे बिस्तर, मोटा जो बिस्तर होता है ना उस पर हम सोते हैं, उसके बाद जो पसीने वाली कैफियत होती है, हालत होती है, तो इससे बेहतर ये है कि बंदा ज़मीन पे सादा चादर बिछाए या गद्दा बिछा ले तो उस पे सो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी फील आती है। सो ज़मीन पे सोने वाले जो लोग होते हैं स्पेशली, और जो बिस्तरे को सही झाड़ते नहीं हैं, सफाई नहीं करते हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा, उनकी जो जिल्द होती है, जो स्किन होती है, उस पर इरीटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है। तो ये मामला मेरे साथ भी एक टाइम में रहा था, और बाद में मुझे पता चला, बल्कि मैं इस हवाले से तफसीली वीडियो देख रहा था और उन डॉक्टर साहब का मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था। वो कहते हैं कि स्केबिस जो होते हैं ना, छोटे जानदार होते हैं, कीड़े होते हैं, इतने माइक्रो, इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी स्किन में चले जाते हैं और वहाँ पर वो जो है ना वो भुदकते रहते हैं, नकलो हरकत करते हैं, तो उसके बाद हमें ख़ारिश का, एलर्जी का और एक उलझन का एहसास होता है। सुनने में कितनी अजीब बात लग रही है ना, लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानदार होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी ऐसी बदपरहेजी में मुबतला हैं कि आप अपनी स्किन केयर नहीं करते हैं, आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। आजकल के स्पेशली इस मौसम में इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लाल बेग होते हैं, कनखजूरे होते हैं, मेरे तो पता नहीं
मैं पिछले साल की बात है कि मैं लेटा हुआ था और बिल्कुल मेरे बगल में आके एक कनखजूरा जो था ना वो आके चिपक गया था, फंस गया था, और उसने ऐसा काटा कि मेरा ना वहाँ पे नील बढ़ गया था। सो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तो जानदार होते हैं, हशरात होते हैं, उनको भी गर्मी लगती है, वो भी हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए बाहर आते हैं। उनका भी राइट है, उनका भी हक है, इनको मार नहीं देना चाहिए अनटिल और अनलेस कि वो आपके लिए जानलेवा ना हो। तो मैंने पहले भी बात की थी और आज भी बात करूंगा, मेरे पास इस हवाले से पूरी रिसर्च मौजूद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो कनखजूरा होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, जो भी कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता और ये एक बेज़रर जो है हशरात में से, कीड़ों में से ताल्लुक रखता है। इसका काम जो होता है छोटे कीड़ों को खाना होता है ताकि बहुत ज़्यादा एक जो क्या कहते हैं बायो लाइफ होती है ना, जो फूड साइकिल होता है, फूड चेन होती है, इसका जो तवाज़न है आपके माहौल में वो बरकरार रहे। इन तमाम जानदारों का, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का, इन हशरात का हमने ख्याल रखना होता है, उनको ऐसे मसल नहीं देना होता और अपनी एहतियात हमने खुद करनी होती है। मैं कह रहा था कि नहाना चाहिए इस मौसम में, तो बहुत ज़्यादा नहाना चाहिए। और वेल, बातें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, हम इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। और जनाब, अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे पोस्ट अपडेट की जा चुकी है, FM 101 लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पर आने के बाद आप पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और यकीनन आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। हम रखेंगे आपकी तमाम फरमाइशों का, तमाम तर आरा और तजावीज़ का तहे दिल के साथ ख्याल और इनका खैर मकदम किया जाएगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और एक और गाना, एक और ट्रैक शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला गाना क्या कहता है। तो जनाब बिल्कुल एक ट्रैक शामिल करना नहीं बल्कि ये रहने देते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, सो मैं चाहूँगा कुछ एनर्जेटिक होना चाहिए।

ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एक और ट्रैक के। अगला गाना हमारा जो है अली ज़फ़र की आवाज़ में, कहते हैं याद दियक। सो मुझे इस गाने के हवाले से अभी एक हमारे कॉलर मौजूद थे, इनकी रिक्वेस्ट भी आई थी, हम इस ट्रैक को शामिल कर लेते हैं, देन इसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो anywhere.

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। और ये गाना रिक्वेस्ट तो चले आई थी और सुना भी हुआ था मुझे, था कि बहुत ज़्यादा फास्ट एक क्या कहते हैं अब बीट ट्रैक होगा, लेकिन बहुत स्लो मेलो था और चल चुका था। और अली ज़फ़र का जो म्यूज़िक है, जो गाने हैं जब चलते हैं तो बंदा कहता है कि चलें यार सुन लेते हैं, पूरा सुन लेते हैं। अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, अच्छे गाने होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वापस आएंगे अपना जो टेम्पो है, जो हमारी बीट है। ओके वेल जनाब, 9:50 हुए चाहते हैं। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, सो जनाब एक और हम बात करेंगे कि जैसा कि ये 13 जुलाई से गालिबन कहा जा रहा है, बल्कि पहले ही ये जो है पेशन गोया हो चुकी हैं मानसून के हवाले से कि बारिशों का आगाज़ होने वाला है। और इस मौसम की आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या है, इस मौसम की सबसे अच्छी बात ये है कि इस मौसम में ना जो पौधे लगाए जाते हैं, जो दरख्त लगाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नमो पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो पैदावार है बढ़ती है और एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। सो इस मौसम की खासियत ये भी है कि इसमें जो पौधों की ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो ज़रखेज़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो कोशिश कीजिए कि जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सो इसमें हमने क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में ना कम अज़ कम चलें बहुत ज़्यादा ना सही एक पौधा लाजमी लगाना है। और वो पौधा हमने सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना, उसको हमने परवान चढ़ाना है, उसको अपने बच्चे की तरह पालना है, अपने पेट की तरह पालना है, उसका ख्याल रखना है। सो जनाब ये काम आप लाजमी कीजिए, और स्पेशली इस मानसून का जो सीज़न है इसमें आपने लाजमी करना है। सो इसका फ़ायदा बिल्कुल ऑब्वियसली आपको भी होगा, समाजी लिहाज से सोशली होगा, आपका जो माहौल है वो बेहतर होगा, लेकिन इसके साथ साथ मजहबी लिहाज से स्पिरिचुअली देखा जाए तो इसके बहुत सारे फ़वाद हैं, बहुत सारे ऐसे दराजात हैं जो कि लिखे गए हैं कि अगर आप दरख लगाते हैं, अगर आप इस तरह से पौधों का ख्याल रखते हैं, ज़मीन का ख्याल रखते हैं, नेचर को, कुदरत को आप जो है ना वो अहमियत देते हैं, फोकियत देते हैं, सो किस तरह से आपके जो मामलात हैं अगले जहां में आखिरत में वो बेहतर होते हैं। सो ये आपने काम लाजमी करने, इस हवाले से हम बात करेंगे और किस तरह के दरख्त लगाने चाहिए, मकामी पौधे, मकामी दरख्त कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जना बिल्कुल अभी कुछ ही देर के बाद आपके जो ऑनलाइन कमेंट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। वैसे काफ़ी अर्सा हो गया है, पिछले महीने में हमने जो शोज़ किए थे उनमें आपके जो कमेंट्स थे, आपके जो पैगाम ऑनलाइन पैगाम होते थे वो कहीं ना कहीं रह जाते थे। सो आज हम शामिल करेंगे आपसे, हम जानेंगे आपसे, हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन नए सामीन जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें सुनना शुरू कर चुके हैं। तो जनाब FM 101 लाहौर का फेसबुक फ़ैन पेज, यहाँ पे पोस्ट अपडेटेड है, बहुत ही अच्छा सा पोस्टर है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरी पिक्चर मौजूद है, वो और बात है कि मैं थोड़ा सा ना अंकल लग रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ नहीं हूँ। तो आपके पैगाम मौजूद हैं और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं वो शामिल करूँगा कुछ ही देर के बाद, आपके कमेंट शामिल किए जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे और अभी हमारे साथ मौजूद थी, क्या नाम है ये लड़की का, नाम क्या है, मैं नाम भूल गया हूँ, और चलिए कोई मसला नहीं है, एक ट्रैक जो है वो डेडिकेट करना चाहूँगा रिमशा को ट्रैक डेडिकेट करना चाहूँगा। और टॉपिक के वाले से बात कर रही थी और इनकी राय को भी शामिल किया जाएगा, आपकी जो ऑनर कॉल्स हैं इनको भी हम इंटरटेन करेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद। सो बिलाल सईद की आवाज़ में कहते हैं नो मेकअप, इस ट्रैक इस बार आपसे मुलाकात होती है, सो स्टे ट्यून, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।
1: Now this one's dedicated to that one love in your life. Bohemia.
2: Bloodline music.
1: Bilal said.

0: Whoa.
1: Now this one's dedicated to that one love in your life. Bohemia.
2: Bloodline music.
1: Bilal say.
3: She doesn't need no makeup.
4: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
5: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
4: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: I love F-

जनाब 9:59 हुए चाहते हैं 49 मिनट हुए चाहते हैं 9:59 AM और अभी न्यूज़पेपर का वक्त हुआ चाहता है, खबरें शामिल करते हैं, देन उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा मत।

को मिलके सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं कहते हैं FM 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं असल में कहने लगा था अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से, बल्कि यही कह देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: माला खेल बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, हो रहे हैं, वो मुहर्रम की वजह से नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं?
1: नहीं, मुहर्रम के बाद भी तो दिन में एक शो हो रहा है बस।
0: अच्छा चले, मैं करवाता हूँ, कहता हूँ मैं, ठीक है,
1: आज होंगे। अब शो किया, आज आपने शो किया, कल शो मलिक ने किया, परसों हाँ, ने किया।
0: सही है, चले ठीक हो गया, करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, सही है।
1: और इंशाल्लाह शो भी माशाल्लाह जबरदस्त, 11-25 मिनट और हम लोग आपके साथ है।
0: अरे क्या बात है, सलामत हो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पौधा शोधा लगाते हो?
1: बिल्कुल नहीं, अक्सर जब हम लोग मार्च में पौधे लगाते हैं।
0: अच्छा, मार्च में लगाते हैं, सही।
1: अभी हम लोगों ने घर में दो पौधे लगाए, हर शाम में उसको पानी दे रहा हूँ।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, चलो यार।
1: जब हम लोग पौधा लगाएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, उसका फायदा होगा, गर्मी की शिद्दत कम होगी।
0: ये हुई ना बात, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इंसान कभी हार नहीं कर सकते जिसको उम्मीद अल्लाह ताला से हो।
0: वो इंसान क्या नहीं कर सकते?
1: वो इंसान कभी नहीं हारेगा जिसको उम्मीद अल्लाह ताला से हो।
0: हाँ, जिसको उम्मीद अल्लाह ताला से हो, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो ठीक हो गया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह वेल जनाब, हमारे साथ एहसन खान मौजूद थे और एफएम 101 के रेगुलर कॉलर, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही नपीतुली गुफ्तगू करते हैं और कोई ना कोई पैगाम, कोई ऐसा मैसेज हमारे इन कॉलर्स के गुफ्तगू में होता है। सो बात कर रहे थे, अपना तजुर्बा शेयर कर रहे थे और जो मीठा होता है ना, मीठा एक फल का नाम है मीठा, सो उसको जब काटते हैं, काटने के बाद उनको भी कह रहा था कि वो कड़वा हो जाता है, बुखार में स्पेशली डेंगू मलेरिया के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो इनके दरख्तों के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत ही मज़ेदार वाक़ा शेयर कर रहे थे। सो वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि अगर ये कभी लाइव आते हैं सो हम इनसे एज इट इज़ सुनेंगे। वेल हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, दैन उसके बाद हम अपने मौजूद के हवाले से बात करेंगे और कुछ ट्रैक्स का सिलसिला जो है इसको भी हम सोन आगे बढ़ाएंगे। ओके ओके जनाब, एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम सलाम,
0: या अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
2: अरे मोहम्मद मुस्तफा साहब, रमजान अनवर गुजर, नाम तो सुना होगा,
0: सुना होगा। मैं तदी जड़ा थे फेडर है ना, मैं मिक्सर था, मैं थले कर लिया
2: और अंत किया है। आपको डेडिकेशन करता हूँ एक शेर, आरजे मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा बहुत ख्याल रखता है अपने दिल का।
0: अच्छा,
2: बहुत ख्याल रखता है अपने दिल का, जब इधर नहीं लगता तो उधर लगा ही लेता है।
0: उधर किधर है?
2: फुटबॉल वर्ल्ड कप पर।
0: अच्छा अच्छा, चलो सही है। रमजान अनवर गुजर हमारे साथ मौजूद है। रमजान, कोई पौधा लगाया कभी जिंदगी में? इत्तफाक हुआ
2: सर, कहते हैं एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए,
0: अच्छा,
2: जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए।
0: क्या बात है, क्या
2: सर, सर वो हमने लगाए हैं पौधे सर, मोहब्बतों के, चाहतों के, और
0: नहीं वाले पौधे नहीं, गल्ला बाती पौधे नहीं, असली पौधा मैं पूछ रहे हैं, कोई लाया कि कोई
2: सर, वो जगह नहीं है सर, वो यकीन करे जगह नहीं है।
0: तो मसला, हाँ जी जी जी,
2: दुनिया के मकबूल तरीन को आप खेल फुटबॉल के बारे में कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, तो सर मैं भी देखता हूँ, यकीन करें, अब तो अपसेट हुआ, जर्मनी आउट हो गया, तो फ्रांस इन मेरी हार्ट फेवरेट में, और अर्जेंटीना और ब्राजील, यकीन करें सर।
0: ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानियों को इतनी ऑब्सेशन क्या है अर्जेंटीना से या फ्रांस से। चलिए इसमें हम बात करेंगे, वैसे ये मज़े की बात है और इसके पीछे एक ना एक मुतनाज़ा कुछ मामलात भी हैं, उस पर नहीं हम बात करेंगे। अच्छा ठीक हो गया, जी जी
2: सर, उनमें उनमें एक अपनापन नजर आता है, यकीन करें, उनकी सूरत मासूम थी है, और इतनी मेहनत करते हैं अर्जेंटीना, लियोन मेसी, और मेरी हमदर्दी भी उसके साथ ही है, लेकिन लेकिन दिल करता है, दिल कहता है कि इस बार वर्ल्ड कप उनका नहीं है, और इस बार वर्ल्ड कप मेरी मेरी दाती राय है, मेरी दाती राय है कि इस बार वर्ल्ड कप फ्रांस ले जाएगा, आगे देखे होता है क्या, लेकिन यकीन करें मेरी सारी दुआएं जो
0: सर, मुझे तो लग रहा है इस बार वर्ल्ड कप जो है ना वो नेपाल ले जाएगा, नेपाल।
2: उनका भी, उनका भी, बड़ा दिल, बड़ा दिल, क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपकी भी क्या बात है सर, आप भी पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं सर आप।
0: हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसे ही है, चले ठीक हो गया, अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ कहना है?
2: बड़ी मेहरबानी, आप आए, मैं रौनक आई, बाहर आई 101 पर, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह
0: हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओके जनाब, 10:40 हुए चाहते हैं और एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, देन उसके बाद हम अपने टॉपिक्स के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब, बल्कि नहीं, हम गाना चला लेते हैं, गाना चला लेते हैं। अगला गाना हमारा कहता है बयान बैंड, और जनाब मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर हैं, इनकी आवाज़ में हम इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। क्या नाम है इनका, असफ़र हुसैन, इनकी आवाज़ में स्टोया को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, कहते हैं सफ़र, और बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में इन्होंने गाया है, जब आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये गाना तमाम प्रदेशियों के नाम, तमाम पाकिस्तानियों के नाम, तमाम समातों के नाम, असल में इंटरनेट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है इशू है, इस वजह से। चलें जी, गाना स्टार्ट हो गया, मिलते हैं स्टोया के उस पार।

0: हाँ जनाब, मैं भागा भागा करके इरादा आसफर हुसैन की आवाज़ में सफ़र ट्रैक। आई डू होप कि आपने इस ट्रैक को इंजॉय किया होगा। 10:44 हुए जाते हैं और कॉलर्स का जो तांता है वो बंधा हुआ है। आपके जो कमेंट्स हैं, ऑनलाइन पैगाम हैं, ये शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ उमेर खान भट्टी मौजूद हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। कहते हैं, भाई वेलकम टू प्रोग्राम सुपर डुपर वॉइस। तमाम दोस्तों को सलाम फ्रॉम डी जी खान निज़ामाबाद। ठीक हो गया, रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं और ठीक हो गया। और कुछ नाम लिए हैं, कह रहे हैं कि जनाब आज मुस्तफ़ा साहिब, आपका शो हमेशा शानदार होता है, खूबसूरत शो पेश करने पर खिराज तहसीन। ठीक हो गया सर, अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात है कि आप ये बात सबको कहते हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, पता नहीं किस बात की। चलें ठीक हो गया। और इनके अलावा भी कुछ पैगाम हैं। इंटरनेट आई थिंक स्लो है, हम मज़ीद आपके जो मैसेजेस हैं वो शामिल करेंगे। हम बात कर रहे थे मानसून के महीने में दरख्तों की अहमियत के हवाले से, इनको क्यों लगाना चाहिए। सो आपसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो
0: जी सर? अल्लाह का शुक्र है, तुसा सुनाओ ठीक हो?
1: अल्लाह का शुक्र
0: है। अच्छा,
1: बशीरा ने मेम काला चुन्नी में सिद्धू।
0: अच्छा जी सर, की कहना चाहोगे?
1: पटाला प्रोग्राम सुन रहा है, काला तीन चार मलाइया ने हुन काल लगी।
0: अच्छा चलो जी, बहुत चलो शुक्र है लगी। डाटा ही वेट कर रहे हैं सर। जी जी
1: जी जी, बिरप्पा ने सर से गल बात कर रहे हैं।
0: अच्छा ठीक हो गया सर।
1: अरे हां जी,
0: ओके जी सर, की कहना चाहोगे? चलो ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ जी चलो। अरे क्या बात है सर, बड़ी मेहरबानी, दुआवां च याद रखना ठीक है। अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक, ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है सर, ओके सर।

0: वेलकम बैक वंस अगेन। 10:48 बचाते हैं, हम बात कर रहे थे मॉनसून के इस सीज़न में दरख्तों को लगाने के हवाले से। तो जनाब, मैं फिर यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए, दरख्त लगाइए ताकि इस टेम्परेचर में जो है ना, इस गर्मी की शिद्दत पर काबू पाया जा सके। आपको कभी इतफाक़ हुआ है, जो हमारा लाहौर का मार रोड है यहाँ पर सफ़र करने का, क्या ही ठंडक का बेहतरीन खुशगवार एहसास होता है। इसको ठंडी सड़क भी कहा जाता है। सर गंगा राम जो थे, उन्होंने ये दरख्त लगाए थे, इसको बिल्ड किया था, तामीर किया था। तो अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, बड़े बड़े काम कर गए हैं और आज भी ये दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं और क्या ही बेहतरीन एहसास जो है वो हमें महसूस करवाते हैं आज के। जना, मैं अभी पढ़ रहा था कि जो नीम का दरख्त होता है, इसके हवाले से ये रिसर्च है, ये एक तहकीक है कि तकरीबन 55 डिग्री तक गर्मी की जो शिद्दत होती है ना, और 10 डिग्री की जो सर्दी होती है, ये बर्दाश्त करने की सलाहियत या ताकत रखता है। हम देखते हैं कि मौसम ख़िज़ां में या बहुत ज़्यादा गर्मी में दरख्त जो हैं वो झड़ जाते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं, घास जो है वो सूख जाती है, जल जाती है। लेकिन नीम का दरख्त है, इसलिए कहते हैं कि जो मकामी पौधे होते हैं, मकामी जो दरख्त होते हैं वो लगाने चाहिए। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ, चले इस पर बात करनी नहीं चाहिए, कर लेते हैं, कि जो आजकल सोसाइटीज़ बन रही हैं, चले पहली बात तो ये कि ये जो अर्बन लैंड होती है, क्या कहते हैं इसको, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जरी ज़मीन होती है, इस पर सोसाइटीज़ बन रही हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर हो रहे तो चलें, अगर आप वहाँ पे पौधे लगाते हैं, दरख लगाते हैं, तो वहाँ पे खजूर का लगा लिया जाता है, पाम का लगा लिया जाता है, इस तरह के दरख्त लगा देते हैं सजावट के लिए, इस तरह के मामलात के लिए कि चलें वहाँ पे खूबसूरती हो जाएगी। लेकिन उन दरख्तों का मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कतई तौर पे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो छांव देते हैं, ना ही कोई आपको जो एक मकामी फल होता है मौसम का, खजूर की जो चले बात कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर वो दरख्त लगाने चाहिए सिर्फ एस्थेटिक सेंस के तौर पर नहीं, बल्कि छांव के लिए, फलों के लिए, एक अच्छी पैदावार के लिए, जो परिंदों का मस्कन होता है इसके लिए। आपको पता है कि जो तोतों के बारे में कहा जा रहा है कि जो तोते होते थे, तकरीबन हमें हर दरख्त पे, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर छत पे कहीं ना कहीं एक वक्त था, दिखाई देते थे। हमारे बड़े इस बात के शाहिद होंगे, गवाह होंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि हमने कभी आज़ाद तोते को कभी उड़ते नहीं देखा। बुलबुलें होती थी, फाख्ताएँ होती थी, बहुत सारे ऐसे परिंदे होते थे, इनके गायब हो जाने की, कम हो जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उनके मस्कनों को, उनका जो हैबिटेट होता है वो ख़त्म कर दिया, उनको कम कर दिया। सो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि एक 12 फीट का जो नीम का दरख्त होता है ना, तकरीबन ये कोई जो मुबालगा राय नहीं है, इस हवाले से पूरी रिसर्च है, तहकीक है, कहा जाता है कि एक लगभग तखमीना जो है 3 एसी जो होती हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, इनके बराबर ठंडक का एहसास जो है वो पैदा करता है, खारिज करता है। सो नीम का दरख्त जो है वो क्यों लगाना चाहिए, इस हवाले से मैंने पहले कहा था कि गर्मी में एक तो आपको घना साया देता है, छांव देता है, और इसके साथ साथ ये ठंडक का जो एहसास है वो भी पैदा करता है। जना बिल्कुल, इस हवाले से मैं बात को इख्तिताम करना चाहूँगा, समअप करना चाहूँगा कि ये जो दरख्त है ना, ये ज़िंदगी हैं और कीमती सरमाया है। ये ऐसा सरमाया है जो कि चले आपकी ज़िंदगी में आपके काम ना आए, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जिंदगानियों के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का, सांस लेने का ज़रिया बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो मकामी दरख्त हैं, त्रेग का दरख्त होता है, क्या कहते हैं, पौधा होता है, नीम का होता है, इस तरह के जितने भी पौधे होते हैं ये आप लगाइए। और इनके हवाले से कहा जाता है, बल्कि मैं पता भी करके आया था और कोशिश मेरी भी पूरी है कि मैं भी कहीं ना कहीं, हमारे वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे हम लगाते रहे हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाते। बच्चे वहाँ पे खेलते हैं कैंचे वगैरह और क्रिकेट खेलते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे वो पौधे ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी भी करीबी नर्सरी में चले जाएंगे ना, वहाँ पे आपको तकरीबन कम से कम 50 रुपये का या 50 से 100 रुपये में आपको वो पौधा मिल जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप ये पौधे लगाएंगे और एक नई ज़िंदगी से हम किनार करेंगे इस धरती को, इस ज़मीन को, इस नेचर को। तो जनाब बिल्कुल, इसके अलावा और भी नर्सरी में ऐसे पौधे पाए जाते हैं, देसी किक्कर का पौधा होता है, जामुन का होता है। जामुन आजकल लग रहा है क्या ही मज़ेदार जामुन जो है वो नीचे गिरते हैं जब हवा चलती है, आंधी आती है, तो कितने मज़ेदार जामुन होते हैं, इस तरह के दरख्त आप लगाइए। इसके अलावा शीशम के, कचनार के दरख्त होते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत घनी छांव देते हैं। इसके अलावा मैंने पीपल के दरख्त की बात की थी, और आम, अमरूद, बेर के जो पौधे होते हैं, खजूर का भी चलें लगा लें। और कोशिश कीजिए कि जो मकामी दरख्त हैं, मैं बारहा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इनको लगाना है, दरख्त लगाने हैं, और इन जिंदगियों को आपने बचाना है। वेल जनाब, 10:53 पे जाते हैं और बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं आपसे इस मुलाकात के, इस साथ के। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं कौन है कहाँ से। सो इसके बाद एक ट्रैक शामिल करेंगे, देन आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉलर जो हैं वो भाग गए हैं। 04221100101। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: हेलो
0: जी, हेलो कौन बात कर रही है कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम,
1: मैं अमारा बात कर रही हूँ। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे।
0: अच्छा, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही, अब आ रही है?
1: नहीं, मैं रेडियो के हेल्प से सुन रही हूँ आपकी आवाज़।
0: अच्छा चलो, आ रही है ना, वहाँ पे आ रही है ना?
1: वहाँ पे आ रही है लेकिन फोन कॉल पे नहीं आ रही।
0: अच्छा चले, कोई नहीं, आती है, मैं कहता हूँ कुछ। जी क्या कहना चाहेंगी? हमारा
1: बिग बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि दरख्त के हवाले से।
0: अच्छा,
1: और हमें चाहिए कि हमें दरख्त लगाने चाहिए।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छी चीज है, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे सांस लेने का हेल्प करते हैं हमें।
0: जी हाँ,
1: बात ये है कि ये माहौल को साफ सुथरा रखते हैं।
0: जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया,
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी
1: और जी। मैं सबको सलाम देना चाहूंगी, अंकल आए थे, हीरा अंकल और तमाम सुनने वाले, जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज जा रही है उनके लिए बहुत सारी दुआएं और अस्सलाम वालेकुम, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस।
0: अरे बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। चलो ठीक है, हमारा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, 10:55 पर चाहते हैं, हम बात कर रहे थे आराम की अकसाम के हवाले से, ये तो बात ही भूल गई मुझे कि इस पे भी हमने बात करनी थी। और जनाब, आगाज़ में मैंने कहा था कि हम हमेशा जो जिस्मानी आराम होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम फोकलिया देते हैं, लेकिन आराम की तकरीबन कहा जाता है कि आज की मौजूदा जो रिसर्च है इसके हवाले से कहा जाता है कि 7 अकसाम हैं, 7 तरह की जो टाइप्स होती हैं जिनके बारे में हम तकरीबन सब नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था। सो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि हमें महसूस होता है ना कि कोई ना कोई तिश्नगी होती है, सोने के बाद भी कभी कभी हमें थकावट का एहसास होता है, जागते हैं तो पासे हमारे दुख रहे होते हैं, कोई ना कोई मामला निकल ही आता है। सो जिस्मानी आराम होता है जिसमें गहरी नींद सोना होता है, छोटी सी झपकी ले लेना, नैप ले लेना, ये आपके पट्ठों का जो तनाव होता है ना, आपके जो पट्टे खिंच जाते हैं, आपके मसल्स में पेन होती है, इसको कम करने के लिए जो है आप हल्की पुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं। आपने देखा है जो जानवर होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, जो डॉग्स होती हैं, जब उठते हैं उठने के साथ ही इतना मज़े का स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी को फैलाते हैं, मूव करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको पता है कि हमने अपनी बॉडी को यूज़ करना है, इसको मूव करना है और इसको अच्छे से हमने स्ट्रेच करना है। सो स्ट्रेच लाजमी किया कीजिए। इससे क्या होता है कि इसकी वजह से आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो नकलो हरकत है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतरीन होती है। सो ज़हनी आराम के हवाले से चले, मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी बात की जाती है। सो ज़हनी आराम भी आपने करना है, लेकिन करना कैसे, इसमें मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि काम के दौरान मुसलसल अगर आप सोच विचार से बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना, तो दिमाग को पुरसकून करने के लिए मुख्तसर किस्म का आपने वक्फ़ा लेना है। सो बर्नआउट क्या होता है कि काम करते करते हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तप जाते हैं, थक जाते हैं। सो कम अज़ कम 5 मिनट के लिए हमने बाहर का कहीं ना कहीं चक्कर लगा के आना है, कुछ पढ़ लेना है, कोई गेम खेल लेनी है, कुछ लिख लेना है। सो अपने आप को जो है ना वो एक काम में फंसा के नहीं रखना, बहुत सादा और बहुत ही आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। इसके अलावा जज्बाती आराम के हवाले से कहा जाता है कि हम हमेशा हर किसी को हाँ हाँ में जवाब देते रहते हैं, जी आप ठीक हैं, जी मैं ठीक हूँ। हमारा तो सलाम दुआ में हाल अहवाल ये होता है कि हम ठीक नहीं भी हैं तो हम कह देते हैं जी जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, इतने बड़े हम झूठ बोलते हैं। तो जज्बाती आराम ये होता है कि कभी कभी अपने जज्बात को निकलने देना चाहिए, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप तकलीफ़ सह रहे हैं, जिस गम से, जिस कैफियत से आप गुजर रहे हैं, कभी कभी उसका इजहार कर देना चाहिए और अच्छे लोगों में करना चाहिए। सो हर वक्त मैं ठीक हूँ का जो नकाब है ना, इसको आप अगर उतार देंगे तो आपके जज्बात का इजहार हो जाएगा और आपको ना कहना भी आएगा. ना कहने से मुराद नो मीन्स नो जो होता है ना, वो आपको तब भी कहना आएगा जब आप अपने जज्बात की जो तर्जुमानी है, जो इनकी रिस्पेक्ट है, वो आप खुद बजाते खुद करेंगे. तो इसके अलावा समाजी आराम होता है. समाजी आराम क्या होता है? सोशल रेस्ट, जिसमें आप अपनी जो समाजी आपकी जो बैटरी होती है इसको आप थोड़ा सा चार्ज करते हैं और काम काज से फारिग हो के आप सोशल जो नेटवर्किंग होती है, जो आपकी पीआर होती है, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है. बहुत हम फ्रेश हो जाते हैं. तमाम ज़हनी अज़ियतें, थकावटें, रकावटें, दुख दर्द कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं. आगाज़ में बात कर रहा था ना चाय के ढाबों में बैठते हैं, गर्मी सर्दी हर तरह की शिद्दत को, जज्बात की, मौसम की हम भुला देते हैं और अपने उस मोमेंट को इंजॉय करते हैं. इसके अलावा सेंसरी रेस्ट होता है, जिसमें आप मोबाइल स्क्रीन का, सिस्टम्स का, लैपटॉप का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और अपनी आँखों को जो है ना वो आप आराम देकर अपने दिमाग को पुरसकून बना सकते हैं. इसके अलावा क्रिएटिव जो रेस्ट होता है, तख्लीकी आराम क्या होता है कि जब आपके आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं तो खुद ब खुद अपने आप को ज़बरदस्ती उस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ चहलकदमी कर लेनी चाहिए. किसी पार्क में चले जाना चाहिए, कुछ खा पी लेना चाहिए, किसी अच्छे माहौल को इन्जॉय कर लेना चाहिए. इसके अलावा स्पिरिचुअल रेस्ट के बारे में भी आजकल बात की जाती है कि इसमें आप कोई दुआ नमाज पढ़ सकते हैं, कोई इल्तजा कर सकते हैं, मराकबा कर सकते हैं. सो ये तमाम तर मामला हैं, तमाम चीज़ें हैं. वाली इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ कि तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद मेहरबान.
2: Coming up next, 101 News Headlines.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को खुसूसी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आलमी सतह के बेहतरीन तरीकों को अपनाने की हिदायत की है। पाकिस्तान की मुसल्ला फ़ौज ने बलोचिस्तान में अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दागे गए 4 इब्तदाई ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने आज से इतवार तक मानसून की पहली बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों की तफसील।
1: This is FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद।

0: फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज।
1: पहली बार वर्चुअल वुमन का कयाम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब
3: 101 FM. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

Assalamu alaikum, this is your dost, your host RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 11 बजे से 1 बजे तक. प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स. कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे. तो सबसे पहले तो आज जिनकी बर्थडे है, जो 1 जुलाई को अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से FM 101 की पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी बेस्ट विशेज ऑफ द डे. और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है.

Today is Wednesday, 1st July. जून का महीना गुजर चुका है और अब हमने जुलाई में कदम रख लिया और साथ ही गर्मी का सामना है. और आप सब लोग जो है ना कैसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अपना रहे हैं गर्मी को मैनेज करने के लिए, ज़रूर हमारे साथ आपने शेयर करने. और मैं भी बहुत सी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना. पीने से ज़्यादा ना अपनी बॉडी के अलावा ना अपनी स्किन का, बालों का भी ख्याल रखना क्योंकि ये ऐसा मौसम है कि आपकी स्किन जो है वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाती है. फिर इन 2-3 महीनों में जो आपकी स्किन को, बालों को नुकसान हुआ होता है ना, वो फिर आप थ्रू आउट द ईयर उसी को ठीक करने में लगे रहते हैं. तो बेहतर है पहले ही एहतियात कर लें. प्रोग्राम में लेडीज़ लाउंज, तो इस हवाले से बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और मर्द हजरात भी अपना सकते हैं. सन ब्लॉक जो है ना वो आप सब लोगों ने ज़रूर ज़रूर लगाना है. उसको एक आप ये मत समझें कि कोई फैशनेबल चीज़ है और आप करेंगे तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेंगे. तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो इतनी सेफ नहीं होती. तो आपकी स्किन से बचाने के लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप रात में, शाम में या घर में जितनी भी क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र जो भी लगा रहे हैं वो तब तक जो है ना असर नहीं करते जब तक आप सनब्लॉक यूज़ नहीं करते. जो भी आपके अगर हाथ हैं, अगर वो जो भी आपके, जो आपको लगता है कि नेक एरिया, जो भी जो जिसका एक्सपोजर टुवर्ड्स सन है, सो डू अप्लाई दैट. उसके साथ साथ जो बच्चों की समर वेकेशंस भी चल रही हैं तो, और गर्मी भी है और बच्चों को, क्योंकि गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं, यू हैव टू यूटिलाइज योर समर वेकेशंस वेरी वाइजली. उसके हवाले से भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी आज आपके साथ.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

Dear listeners, welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. अगर आप अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 111-0001. You can also message us at 4471. गर्मी की शिद्दत जहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, जो है ना, ज़्यादातर लोग अपने घर से काम के लिए निकल चुके होंगे या निकल रहे होंगे, तो कोशिश करें अपने साथ कोई अम्ब्रेला ज़रूर रखें या गीला टावल ज़रूर रखें, और पानी की बॉटल के बगैर आपने घर से नहीं निकलना है. और कोशिश करें कि पानी के अंदर ना कुछ दो तीन जो है आपने स्लाइसेस ऐड करने हैं खीरे के, थोड़ा सा एक चुटकी नमक ऐड कर लें और थोड़ा सा जो है एक अदरक का छोटा सा पीस उसके अंदर डाल दें, छोटा सा पीस एक एप्पल का डाल दें. इनका बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें जो हैं हाइड्रेटेड रखेंगी और जो नमकियात है ना सारी वो पूरी होती रहेंगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है. तो जब आप पानी की सूरत में ही आप में आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स जाते रहेंगे ना, तो आपके लिए बहुत हेल्दी है और कोई मुश्किल नहीं है. एक दो मिनट लगते हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे तो कल आप दवाइयों से बच सकेंगे. यहाँ मैं ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ, तू ज़रूरी है टू माई ऑल द फैंस, एवरी वन लिसनिंग. हियर यू गो.

जी आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक अदनान ढोल की आवाज में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और यहाँ पे जल्दी से जो हमारे कुछ फैंस जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके कमेंट्स भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ। कवल नाज ने हमें मैसेज किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रमज़ान गुजर ने कहा है आदाब तस्लीमात मैम, जी आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। हमदुल्ला मलाखेल ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी वेरी मच। कमल नाज कहती हैं कैसी हैं आप। और रमज़ान गुजर ने कहा है आई एम प्रेजेंट। और मलिक मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच। और अब्दुलरहमान ने हमें थैंक यू के प्यारे से जो है ना इमोजीज भेजे हैं। और रमज़ान गुजर ने कहा है सुपर से भी ऊपर शो, माई ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट मैम वजी आज़म, कीप इट अप, थैंक यू वेरी वेरी मच। और कंवल नाज ने कहा है काफ़ी दिनों के बाद आपको सुन के अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब हमारी एब्सेंस का एहसास जो है हमारे सुनने वालों को होता है। और मैम वजी आज़म साहिबा, रमज़ान गुजर ने मैसेज किया है कि आपकी सेहत तबीयत कैसी है, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और आप वीक में 2 शो कर लें जी। डेफिनेटली आपकी जो सजेशन है हमने नोट डाउन कर ली है। और कंवल नाज कहती हैं शमसी लिसनर रेडियो ग्रुप वालों की तरफ से भी सलाम और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुलरहमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हमें में बहुत अच्छे अच्छे से प्यारे से मैसेजेस किए हैं, कहते हैं एहसास एक खूबसूरत जज्बा है, अपनी ज़ात का एहसास इंसान का पहला हक है, मगर जो लोग दूसरों का एहसास करते हैं वो लोग बहुत ख़ास और अजीम तर होते हैं। बिल्कुल। और आजकल जो है ना बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन हर जगह पर छुट्टियाँ हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसे मुल्क जहाँ पर लोग अक्सर जो हैं ये जून जुलाई में जो थे ना वहाँ पे चले जाते थे वोकेशंस करने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत गर्मी है। यूके जैसे मुल्क में जो है एसी की शॉर्टेज हो चुकी है और 2-3 महीने तक उनको नोटिस आ रहे हैं कि एसी अवेलेबल नहीं है, कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि उन लोग वहाँ तो हार्डली घरों में पंखे होते थे, पंखे उन्होंने लास्ट ईयर गर्मी कुछ हुई थी तो कुछ लोगों ने लगाना शुरू किए थे, अब इस साल एसी के बगैर वहाँ पर रहना मुश्किल है। इसलिए जो लोग वोकेशंस के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान जाना प्लान करते थे जी मौसम अच्छा हो तो वो भी जो है ना सीन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि देखें हर जगह जहाँ पे खेत हैं दरख्त हैं उनको काट के ना सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, घर बन रहे हैं, डिफरेंट नई हम रोज़ सुनते हैं एक नई नई सोसाइटी का आगाज़ हो चुका होता है कि घर बन रहे हैं मकान और क्या क्या, मतलब देयर इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, जिसकी वजह से प्लांटेशन जितनी कम होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इट्स दिस इज़ समथिंग हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जैसे अगर आप जर्मनी देखें, फ्रांस देखे, वहाँ पे हमने बहुत

जिसकी वजह से प्लांटेशन जितनी कम होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है. इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इट्स दिस इज समथिंग हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो जैसे अगर आप जर्मनी

जिंदगी है, आगे बढ़ती रहती है और गुजरती रहती है, लेकिन एक जो सही वक्त पे सही फैसला कर लेना ना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि वक्त गुजर जाता है और आप कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, काश मैंने ये किया होता, काश ऐसा हुआ होता। तो उस काश को जो है ना, आपने ज़िंदगी से निकालना है। अगर कुछ दिल में है, मेक इट हैपन, डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो। कल कल करते ना, हमेशा वक्त गुजर जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। और लोग यही चाहते हैं कि आप जो है ना बस सोचते ही रह जाएं, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि लोग आपको इनकरेज करें कुछ आगे आने के लिए, कुछ करने के लिए। वो यही कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकोगे, तुमसे नहीं हो सकेगा, इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते। हम जो सुनते हैं उसी पर ही यकीन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पर मज़ीद बात करेंगे बच्चों की अपब्रिंगिंग पे, क्योंकि आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे ज़्यादा टाइम घर पे होते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम कि उनको स्कूल में जाना है, जल्दी उठने करने की कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजी हासिम। टाइम हो चुका है 11:33 AM इन द स्टूडियो। जी, ये जो टाइम है समर वेकेशंस का, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर आपके बच्चों का इंटरेस्ट किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं भी है, तो ये टाइम होता है बच्चों के साथ मिलके डेवलप करने का। अभी ये वो स्टेज उनकी नहीं आई होती है कि वो कहें जी हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। आप उन्हें जिस भी एक्टिविटी में डालेंगे, जो भी स्पोर्ट्स के लिए आप उन्हें लेके जाएंगे, उनका उसी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर उनको आप बेशक स्विमिंग के लिए लेके जाएँ, टेबल टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, लेकिन कोई ना कोई स्पोर्ट्स जो है उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बिकॉज़ जब आप स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे कुछ लोग जब जिम जाते हैं ना, तो दिस इज़ द ओनली वे कि वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आजकल जो है ज़्यादा ट्रेंड ये हो चुका है कि जो चीज़ें हैं ना, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बस हम स्टोरी लगा दें और किसी को कुछ कहें ना, कुछ बताएं ना, कि उसे खुद ही समझ जाना चाहिए। तो एक जो कहते हैं ना, एक जो फ्रेंकनेस और से बातें करने का जो रुझान है, वो पहले से बहुत कम हो गया है। जितना जो है हमें कनेक्टेड रहने के जो ज़राए जो है ना ज़्यादा है, उतनी वो सब चीज़ें ना थोड़ी दूर जा चुकी हैं। तो इसलिए जो है आप जब कोई, जैसे जो एक मिडल एज लोग होते हैं, वो जिम ज़रूर करते हैं, वो कहते हैं हम ज़रा फिट फील करते हैं, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उसी तरह अब बच्चों को भी जब आप स्पोर्ट्स में, जब आप कोई भी जो उन्हें पसंद है वो आप कराएंगे, जो है नशोनुमा भी अच्छे तरीके से होती है। और साथ ही आपने ज़रूर शेयर करना है आज आपके किचन में क्या बन रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सब माँ की जो कोशिश होती है ना, बस ऐसा ही कुछ बना लें जो जल्दी से बन जाए। और बच्चे बहुत शौक़ से भी खाएं, और बच्चों की पसंद की चीज़ें ना आप सबने ज़रूर घर में बनानी है, ताकि जो बाहर से बहुत ज़्यादा खाने का ट्रेंड है ना, वो कम हो और बच्चे घर की चीज़ें ही शौक़ से खाएं, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बाहर के खाने से ही आती हैं। तो आज आपके किचन में क्या बन रहा है, आपने ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है। और जामुन का मौसम भी आ चुका है, और मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की बहुत अच्छी जामुन की ड्रिंक, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये जामुन जो है ना, उसमें से उसकी गुठली निकाल लें, और बाकी जो जामुन है उसे आप थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करें, और उसमें कोई भी वाइट फिजी ड्रिंक जो है वो उसमें आप ऐड करें, और थोड़ा सा जो है ना, एक पिंच आपने सॉल्ट डालना है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंट ड्रिंक बनती है, और रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत बहुत महंगी मिलेगी। पीना कोलाडा की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबका बहुत फेवरेट है, और रेस्टोरेंट्स में सब बहुत शौक से पीते हैं। उसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क, शुगर, क्रीम, ये तीनों चीज़ें 2 टेबलस्पून होंगी, 1 पाइनएप्पल स्लाइस, और 1/2 ग्लास आपने डालना है पाइनएप्पल जूस का, और 2-3 आइस क्यूब्स ज़रूर डाल लें, और बहुत ज़बरदस्त पीना कोलाडा बनेगा। आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम. प्रोग्राम है लेडीज लाउंज. जी आज है 1 जुलाई, और जुलाई के महीने में जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं जिनका बर्थडे आता है, वो कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ. हुमायूं सईद जो है वो 27 जुलाई को पैदा हुआ है 1971. माया अली सनम बलोच, मानूर बलोच, अली सेठी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वो भी जुलाई 1984 में पैदा हुए. मीरा जो है वो भी जुलाई के महीने में पैदा हुई. ये थे कुछ सेलिब्रिटीज़ जो कि जुलाई के महीने में जिनका बर्थडे आता है. और आपने साथ ही हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है. और आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत रुझान है, उन्हें बेकिंग का और जो कुकिंग का भी बहुत शौक है. पास्टास का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो ज़रूर आपके बच्चों को जो भी शौक है, जो भी शौक है, वो ज़रूर उन्हें करने दें. ये मत कहें कि तुम गन डाल दोगे, ये कर दोगे, ना करो. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना हम उनके टैलेंट को आगे नहीं आने देते. खाने में आप जो भी बनाया, आपने जो सैलड है वो साथ ज़रूर बनानी है, क्योंकि जो सैलड का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो होता है क्यूकम्बर. खीरे में जो है ना 90% जो है वाटर होता है, और आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है. खीरा, तरें, सब कुछ जो है ये अपनी सैलड में ज़रूर शामिल करें. और सैलड आप किसी भी डाइटिशियन पर जाएंगे, कहीं भी आप न्यूट्रिशनिस्ट पर जाएंगे, वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि सैलड का एक बाउल आपने अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर शामिल करना है. देखो यार, अपना ख्याल खुद ही रखना है, किसी ने आके रखना नहीं. और खुश भी अपने आप को, खुश भी आपने अपने आप को खुद ही रखना है. कोई नहीं आएगा आपको खुश रखने के लिए. और अगर आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी किसी और को दे देंगे ना, अगर वो ये करेगा तो ही हम ये करेंगे, वो यूँ हो करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, तो ये बात गलत है. आपने अपनी लाइफ की, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देनी. और अगले बंदे को भी इतना बर्डन अप करने की क्या ज़रूरत है. देखिए, गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, रास्ता वही होता है, मंजिल वही होती है, और पहुंच भी आप वहां पे ही जाते हैं जहां आपने पहुंचना होता है. तो मैटर क्या करता है डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता. अक्सर जब आप कहीं पे जाते हैं ना सैर व तफरी के लिए, तो क्या ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ना, वो होता है रास्ते में कितना इन्जॉय किया. मिल के जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाने सुनेंगे, तो एक दूसरे का साथ जो है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है. और आजकल जैसे मैंने कहा, छुट्टियाँ हैं, बच्चे ज़्यादातर घर पर हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ रहना, अपने दिल की बात शेयर करना उन्हें ज़रूर सिखाएं, उन्हें टाइम दें. उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो ज़रूर ज़रूर उन्हें करने दें. क्योंकि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं ना ज़िंदगी में, वो अगर आपसे गुम जाएं या ना भी मिलें, तो चलिए वो रिप्लेस की जा सकती हैं, और वो बाद में आपको, आप चलें कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना. लेकिन जो आपको कभी नहीं मिल सकती ना, वो है आपकी ये ज़िंदगी, ये वक्त. तो अपनी ज़िंदगी को खुद वैल्यू करना सीखें. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने सीखना है, और साथ अपनी न्यू जनरेशन को, आपके छोटे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, जो भी आपके घर में छोटे कज़न्स हैं, उन्हें भी सिखाएं. आपकी छोटी छोटी बातों से वो बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि आपको बहुत सालों बाद जाके आइडिया होता है.

तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आपने ना अपना खाना खाना है मेडिसिन की तरह, ठीक है ना, ताकि आपको मेडिसिन ना खानी पड़े। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और अक्सर होता है यार वक्त का पता ही नहीं चला। इससे पहले कि आप ये जुमला बोलें, यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, क्योंकि अब वो दौर आ चुका है कि हर एक के हाथ में स्क्रीन्स हैं, मोबाइल्स हैं, और सोशल मीडिया का जो है ना अफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके बच्चे हैं ना उनका टाइम ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना टाइम कुछ प्रोडक्टिव सीखने में गुजारें। क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तब उनकी एक स्ट्रिक्ट रूटीन होती है कि स्कूल से अभी आए हैं, फिर उन्हें स्कूल का होमवर्क करना है, कोई टेस्ट है, वो है, तो उनको टाइम नहीं मिलता इतना जिनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको टाइम देने का। तो आप उनको अगर पेंटिंग पसंद है उनके साथ जाएँ, उन्हें कलर्स लेके दें, पेंट्स लेके दें, कैनवस लेके दें। कैनवस आपको एक मीडियम साइज़ का कैनवस बहुत सस्ता सा मिल जाता है, 60-70 रुपीज़ का मिल जाता है। उनमें उनके साथ डिफरेंट सीनरीज बनाएं, आपको आप कोई भी आप नेट से निकाल लें, कोई सीनरी, कोई भी पिक्चर जो भी उनको पसंद है, और उनके साथ जो है ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। तो मिलके टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप में कभी कभार ऐसा होता है ना कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो भी आप शेयर करना पसंद नहीं करते, तो आप कहते हैं कि नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉब्लम्स है ना ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों से ना दोस्ती का रिश्ता बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्ती का रिश्ता आपने बना के रखना है अपने बच्चों से या अपने छोटे बहन भाइयों से। वो जो कहते हैं ना कि जो रोब हर टाइम जमाना ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

वेलकम बैक, प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजी हासिम। टाइम इज 11:53 AM इन द स्टूडियो। जी तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपने अपने बच्चों का टाइम जो है अच्छे तरीके से, ताकि प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से किया। क्योंकि देखिए, जून का एक महीना गुजर चुका है समर वेकेशंस का, और अगस्त में जो है ना स्कूल जो है ओपन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो उससे 10-15 दिन पहले जो एक एक्साइटमेंट होती है ना नई किताबों की, नए बैग की, यूनिफॉर्म की, उसकी तो और ही बात है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो नई किताबों की खुशबू है ना वो बहुत बहुत पसंद है। तो उसका जब वो नई किताबें अक्सर होती थी, जब मैं अपनी बचपन की स्कूल की मेमरीज़ अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं जो नई किताबें खोल के अक्सर उनको स्मेल करके फिर बंद कर दिया करती थी। और आप भी ज़रूर अपनी स्कूल की जो मेमोरीज़ हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, आपके स्कूल के डेज़। क्योंकि जो, और एक ये भी बात है कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा आपके दिल के करीब होते हैं। और हालांकि हमारे ज़माने में इतना ट्रेंड नहीं था कि हम लोग जो अपने दोस्तों से कनेक्टेड रह सकें, अब तो बहुत से ऐसे ज़राए हैं कि आप अगर स्पेशल फ़ोन ना भी करें तो आप मैसेजेस भेज सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपस में ऐसी पक्की दोस्ती होती थी ना। आपकी अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ कैसी दोस्तियां हैं जरूर हमारे साथ शेयर करें। और सब जो मेरे सुनने वाले हैं उनसे, उन्होंने मेरे साथ जरूर शेयर करना है कि हाउ यू मेड दीज वेकेशंस प्रोडक्टिव फॉर योर चिल्ड्रन। या अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें आज प्रोग्राम में शेयर की हैं, तो उम्मीद है कि आपको उससे भी बहुत से आइडियाज़ मिले होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे अगर कुछ कहें कि उन्हें कुछ ये पसंद है, उन्होंने आज ये खाना है, करना है, तो ज़रूर ज़रूर उनकी जो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं ना, देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जिनकी ख्वाहिशें भी बहुत मासूम छोटी छोटी सी होती हैं, और हम बस कह देते हैं नहीं आज बहुत गर्मी है, आज ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें और कोशिश करें कि आपकी जो कटिंग वगैरह वाला काम है ना वो आप कहीं ऐसी जगह पर कर लें जहाँ गर्मी नहीं है, अपने रूम में या किसी और कमरे में, और फिर सिर्फ कुकिंग करने के लिए आप किचन में जाएँ, ताकि आपको भी गुस्सा ना चले। देखिए आपका मूड अच्छा होगा ना तो खाना भी अच्छा बनेगा, ठीक है ना। और बच्चों की फरमाइश को हमेशा हमेशा आपने ज़हन में रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी और आपकी फैमिली के दरमियान ना गैप्स बढ़ा देती हैं। फिर आप कहते हैं उसने ये सोच लिया या कब ये उसने स्टेप ले लिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग, सिर्फ बच्चे ही नहीं, आपके अपने बहन भाई या आपके बाकी घर के अफराद किस डायरेक्शन में निकल गए हैं आपको पता ही नहीं चलता। यहाँ पे समरत कदीर की आवाज़ में एक ज़बरदस्त ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने ख़वातीन से मुतालिक नवी OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया, जो रवां माह की 12 तारीख को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। ISPR ने कहा है कि मुसल्लफ आज पूरी तरह चौकस हैं और वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के मैंडेट को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती आफात से निमटने के इदारे ने आज से इतवार तक मानसून की पहली बारिशों के सिलसिले के हवाले से इंतबाह जारी कर दिया है। खबरें तफसील से।
1: दिस इज FM
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब

0: जी वेलकम बैक। अभी टाइम हो गया है 12:38 PM और मुझे भी बहुत से लोगों से पता, एक दो लोगों ने जिक्र किया कि वो खाना खा चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जो है ना अपना जो सुबह जल्दी उठें और जल्दी नाश्ता करें, जल्दी खाना खाएं, ये सेहतमंद रहने का ना बहुत बड़ा राज है। और रात को हमेशा आपने कोशिश करनी है कि सोने से कम अज़ कम 3-4 घंटे पहले ना आप खाना ज़रूर खा लें, क्योंकि पेट फुल जब होता है तो आप सोते हैं तो वो बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए कोशिश करें कि आपका सोने से पहले जो खाना है ना सही तरह डाइजेस्ट हुआ हो। ठीक है, अच्छा, हमें अभी जो हमें RJ वसीम अहमद ने मैसेज किया है, कहते हैं यू आर सुपर स्टार ऑफ FM 101। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इतने खूबसूरत मैसेजेस करने का। और ये कुछ मैसेजेस मैंने पहले शामिल कर लिए थे। और रमज़ान गुजर ने कहा है प्ले लिस्ट इज़ सुपर हिट, बहुत शुक्रिया। कंवल नाज ने हमें मैसेज किया है। अब्दुल रहमान रहमान ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान गुजर ने कहा है मैम योर लुक इज़ लाजवाब, क्वीन स्टार, थैंक यू वेरी वेरी मच। और कंवल नाज कहती हैं बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू। और कहा है उन्होंने पाकिस्तान में सब्ज़ा कम होता जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, इसकी वजह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, अगर आपने शुरू में मेरा शो सुना हो, कि आप देखिए फ्रांस, जर्मनी, बहुत से ऐसे मुल्क, हालांकि UK जैसे मुल्क में भी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि वहाँ पे AC की शॉर्टेज हो गई है, कि लोग जो हैं डबल ट्रिपल प्राइस दे के भी AC ख़रीदना चाहते हैं लेकिन जो है ना ACs अवेलेबल नहीं है। तो नो डाउट एक रीज़न ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, उसका रीज़न यही है कि ग्रीनरी बहुत कम होती जा रही है और दरख्त काटे जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, सोसाइटीज़ नई सी नई बनती जा रही हैं। और देखें जो है ना जी, जो दरख्त हैं ये पेपर बनाने में भी काम आते हैं, टिश्यू पेपर बनाने में भी काम आते हैं, फर्नीचर तो बनता ही है और बहुत सी चीज़ें इनसे बनती हैं। तो इसके साथ साथ देखें ये हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और जैसे नीम का दरख्त जो है बहुत ज़्यादा जो है ठंडक फराहम करता है, इस तरह के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा घर में लगाएं। हमेशा मैं कहती हूँ ऐसे दरख्त लगाएं जिसकी छांव में आपने नहीं बैठना, मतलब आप ऐसे काम ज़िंदगी में करके जाएं जो आपको पता हो कि जी लोगों को फ़ायदा देंगे और उसमें आप ये मत सोचें कि आपका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, ओहो कॉल ड्रॉप हो गई। तो आपने ये कभी नहीं सोचना कि ना इसमें मैं ये करूँगा या वो करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है ना। हमेशा जो आप बस दरख्त लगाते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम सलाम आसिफ जी, आसम जबरदस्त शो, सुपर डुपर बड़ी जट गल कर रहा है पीजी रावी दे कंडे।
0: अच्छा जी, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक आप जी, शुक्र अल्लाह का जी। आप ठीक ठाक आप?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: आप जी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो है आपका, क्या बात है, आपने 4 चांद गा दिए हैं शो को।
0: चले जी, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।
1: और गर्मी की बात कर रहे हैं आप जी, तो गर्मी वैसे दरख्तों की वजह तो नहीं आप जी, आज ये सोलर प्लेटा वाम लवा रही ना, इन्हों की वजह तो ज्यादा हो गई। माशाल्लाह रावी के कंधे से इन्ना को दरख्त असी लाजता कि माशाल्लाह वैसे भी बहुत दरख्त ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर बात है फिर वो उनसे थोड़ा ठंडक का एहसास होता है उनसे।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप जी, तो गर्मी तो वैसे अल्लाह पाक ने दिल जुड़े आप जी महीने ने एक दो जड़े आ गर्मी दे ले थे।
0: आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रावी के साइड पे वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ दरख्त ज्यादा है।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत दरख्त आप जी, असी आपके डेरे से बड़े दरख्त लाए ने, माशाल्लाह टूर चल रहा है, नहा रहा है, नाले थोड़ा प्रोग्राम सुन रहा है।
0: चले जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप अपने स्कूल के दिनों में गर्मी की छुट्टियों से कुछ अगर यादें शेयर करना चाहें तो?
1: आप जी जो स्कूल पढ़ते सर छोटे असी पढ़े ही नहीं, असल तीसरी चौथी के स्कूलों नस गया, डेरे से चले गया, आपू यार
0: कमाना शुरू कर दिया।
1: لیکن
0: نہیں, بچوں کو آپ نے ضرور پڑھائی میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا؟
1: ہاں جی ہاں جی, ماشاء اللہ آپ جی, میرے دونوں بیٹے جو بڑا بیٹا ہے وہ 12th کی ابھی پیپر دے رہا ہے, کل اس کا پیپر تھا, آج نہیں ہے, کل صبح پھر ہے. چھوٹا جو ہے وہ 11th میں پڑھتا ہے.
0: چلیں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے,
1: ان شاء اللہ بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں نہیں, اسی تو چلو نہیں پڑھے, ماں پیو لاڈ کی وجہ تو نہیں پڑھ سکے تھے, لیکن بچوں نے لازمی پڑھائی انسان واسطے ضروری ہے,
0: ضروری ہے, بالکل بالکل. چلیے جی, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ.
1: آپ جی تھوڑی سونی گلیں, پوری ٹیم نے سلوٹ, تو دو ہاتھوں سلوٹ ہے. میری آپ کملدار صاحب ایسا سلام ہے, ساڈا شمشی گروپ کی طرف میں بول رہا ہوں, رضا چوہری صاحب نے انہوں نے سلام ہے, تو میری حرم شاہ پی ہے, نیلا پی ہے,
0: ہاں جی. یہ تھے ہمارے ریگولر لسنر اور کالر, ہمیشہ جو ہے نا ان سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگتا ہے. اور جیسے کہ گرمیاں ہیں نا, تو اکثر لوگ جو ہل اسٹیشنس پہ جاتے ہیں, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت سے ایسے اقدامات کری ہے کہ لوگوں کو نا اچھی جو ہے نا اچھے طریقے سے ٹوریزم پرووائڈ کی جائے. تو ضرور آپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور پلان کرنا چاہیے, انہیں کہیں باہر لے کے جائیں, دو تین دن کا بریک جو ہے نا سب ڈیزرو کرتے ہیں. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
2: میں عافیہ خان, لاہور سے.
0: جی, کیا کہنا چاہو گی عافیہ؟
2: میں کہنا چاہوں گی آپ کا شو بہت اچھا ہے, اور مجھے آپ کی شو کی جو اچھی بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سانگ پلے کرتی ہے بہت اچھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پسند کے سانگ پلے کرتے ہیں نا, جو آپ نے وہ سانگ پلے کیے جو سب انجوائے کر سکیں.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل.
2: اور ایک بات کہ میں نا شاد باغ والی سائڈ پہ رہتی ہوں, میں ابھی نا آپ کا شو جو ہے 11 سے سن رہی تھی, تو 11 سن رہی تھی, مجھے ضروری کام تھا, تو میں باہر گئی ہوں مارکیٹ تک. تو میں نے راستے میں نا میں یہ سوچ رہی تھی شو ختم نہ ہو جائے, اللہ میں جلدی گھر پہنچ جاؤں, میں نے کال کر لیا. تو راستے میں نا میں جا رہی تھی, وہاں پہ اسکول ہے, تو اسکول کا جو چوکی دار ہے نا وہ ریڈیو لگا رہا تھا اور آپ کا شو سن رہا تھا. میں نے آپ کی آواز سنی, میں نے کہا کیا ہی بات ہے, سارے سنتے ہیں 101.
0: دیکھ لو بس, ہاں دیکھ لو بس.
2: میں آپ کا سوچ رہی تھی, اور اسی میں چوکی دار جو ہے اس نے ریڈیو لگایا ہوا تھا, آپ کا شو سن رہا تھا, میں جلدی جلدی گھر آئی, میں نے ریڈیو لگایا اور آپ کو فون کیا, اور اتفاق سے لگ گیا.
0: صحیح ہے صحیح ہے. چلو جی, پروگرام کا ٹائم بہت بہت کم رہ گیا, اور بھی کالرز ٹرائی کرے ہوں گے, ان کو بھی چانس دینا چاہیے.
2: آپ ایک ریکویسٹ پلے کر دیں,
0: جلدی جلدی سے بولو اگر ہو سکا تو. آئی ول ٹرائی, بیکاز بالکل 14 منٹس
2: کوئی بات نہیں, اگر نہ ہو سکا کوئی بات نہیں,
0: نیکسٹ ٹائم
2: ضرور پلے کروں گا. منہ اعتبار دینی
0: ہے. اچھا, کون سا؟
2: منہ کا بینو کر کے اعتبار دینی ہے.
0: ٹھیک ہے, یہ کس سنگر کا ہے؟
2: یہ کیا نام تھا, وہ سرمد کپور.
0: ٹھیک ہے, سرمد قدیر کا ہے.
2: اور تمام سننے والے کو السلام علیکم, پاکستان زندہ باد, 101 زندہ باد.
0: زندہ باد, اوکے جی, اللہ حافظ. جی, یہ تھی عافیہ, ہماری بہت اچھی تھی کالر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ہمیشہ ایسے درخت لگائیں جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ کو نہیں پتہ اس پہ بیٹھنے والا, اس کی شاخ میں بیٹھنے والا پرندہ وہاں جو گھونسلے بنا رہا, جو گھونسلے بھی وہ بناتے ہیں, وہاں انڈے دیتے ہیں. ہر انسان کا کیا پتہ کبھی اس دنیا میں بھی نہ ہوں, اور وہ لوگ جو ہیں ان درختوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں, اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہوں, پرندے جو ہیں وہاں اپنا گھر بنا رہے ہوں, اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے. تو یہ درخت تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن آپ نے زندگی میں کچھ ایسا ہی کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کریں. کہتے ہیں نا, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی بہت جو ہے نا ثواب کا کام ہے, یا صدقہ سمجھ لیں یا ثواب سمجھ لیں, کسی کو راستہ دے دینا نا, کیونکہ آج کل گرمی میں نا سب بہت تیز تیز جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو راستہ دے دینا نا وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے, اس لیے پیشنس پیدا کرو یار. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا شو.
3: بڑی مہربانی, رمضان انور گجر ماڈل ٹاؤن لاہور سے خوش آمدید کہتا ہوں. عرض کیا ہے फूल हैं बहुत से गुलाब जैसा कोई नहीं, फूल हैं बहुत से गुलाब जैसा कोई नहीं, शो हैं बहुत से पर आप जैसा शो और कोई नहीं। बहुत सी दुआओं के साथ बा अदब का मुलादा होशियार आवाज की दुनिया की मलकाए आलिया मलकाए सलामत सदा सलामत नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन भारतीय नेशन रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 पर तशरीफ ला चुकी है सुनने वाली अजीम कदीम सुपरस्टार समातों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात गुड आफ्टरनून पाकिस्तान मेरी जान कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग माय मेंटोर दी लेजेंड आरजे मैं वजीहा आसिम साहबा के संग तरन पाग साडे दर्शन हुए तुहाडे चश्मे बदूर बहुत दिनों के बाद आपकी खूबसूरत बदन में हाजरी का मौका मिला जो कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। लाहौर और उसके मजाफात में ऑन ईयर कॉल का वक्त हुआ जाता है बल्कि खत्म हुआ जाता है।
0: शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने कॉल की प्रोग्राम में शामिल हुए और हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे हैं वाकई के जो होते हैं ना वाकई उनके होने से पता चलता है कि वो शो में आ चुके हैं।
3: बिल्कुल ऐसा ही है ये मेरा एक टूटे फूटे लफ्जों का मजमूआ है जो कि मेरी एक मोहब्बत है रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 से तकरीबन कोई 20-22 साल से जो मैंने प्रोए हैं एक खूबसूरत महल्ला में। बहुत मुमकिन है इसमें कोई गलती हो लेकिन अगर कोई गलती हो तो तय दिल से माजर चाहता हूँ और अर्ज करता हूँ कि मैं इंतजामिया से कि आपके शो वीक में दो होने चाहिए।
0: सही है ठीक है जी आपकी जो सजेशन है ना आगे पहुंच जाएगी। जी जी
3: हाँ पहुंच गई आवाज आगे पहुंच गई आवाज के दोष पर रही है इंशाल्लाह और ब्रॉडकास्टिंग भी लाइव लाहौर स्टूडियो में अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए सेहत सलामती और सुकून की और अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली में और हमारा ये जो गुलशन है रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 इसको ता देर आबादो शादो आबाद रखे। इसके दम से ही हमारी बहारें हैं इसके दम से ही हमारी रौनकें हैं इसके दम से ही हमारा सब कुछ है हमारा इलम जो भी इधर कॉन्फिडेंस मिलता है जो भी इधर सीखने का सिखाने का अमल मिलता है अल्लाह पाक इस अदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की था।
0: आमीन आमीन आमीन आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यार का आपके प्यार का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: चाबी के हवाले से ये कहूंगा कि चार बच्चे हैं माशाल्लाह तीन यूनिवर्सिटी जाते हैं एक कॉलेज जाती है अब मेरे दो छोटे बच्चे रह गए माशाल्लाह टोटल छह बच्चे हैं तीन बेटियां तीन बेटे अल्लाह पाक सबके बच्चों का नसीब करे उसके साथ मेरे बच्चों का भी नसीब अच्छा करे। तो मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने मैट्रिक 3 साल में किया लेकिन ये मेरे लिए एजाज की बात है मेरे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल के तीन चल गए चौथे भी जाएंगे आता आता सारे जाएंगे ये मेरे लिए बड़े एजाज और बड़े मकाम की बात है और जो बड़े हैं वो छोटों को देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है अब उनकी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी कमाना है खिलाना है और उनकी अच्छी तरबियत करनी है और उनको इस मुल्क के पाकिस्तान का अजीम शहरी बनाना है ताकि वो मुल्क का माँ बाप का और मशरे का नाम रोशन
0: करें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी और इसी तरह अगर सब लोग सोचे ना तो क्या ही बात है।
3: बड़ी मेहरबानी टाइम का मुकाबला
0: पाइंदाबाद थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे रेगुलर कॉलर थे रेगुलर लिसनर। प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह चुका है टाइम हो गया है 12:52 और आज हमें ना ये जो भी कॉल आई थी आफिया की और हमारी नई नई कॉलर है तो उनका मैं कोशिश करूंगी उन्होंने जो गाना कहा है ज़रूर प्ले कर सकूं। एक कॉलर है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं।
4: हां बाबा लाहौर डिफेंस से बोल रहा हूं।
0: हां जी क्या कहना चाहेंगे आप वेलकम टू द शो।
4: यार मैंने तो अभी ट्यून किया है ये बात सुन रहा था।
0: अच्छा अच्छा
4: बाकी नाउ ए गुड शो
0: थैंक यू
4: इंशाल्लाह फिर बात करेंगे
0: चले थैंक यू ओके लाफिस। आपको शो अच्छा लगा उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हियर इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग योर वे डू एंजॉय द ट्रैक आई विल बी राइट बैक।

0: जी आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा सरमद कदीर की आवाज में। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? जी कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: आप दीवा?
0: जी हाँ,
1: आप
0: दीवा
1: कर रही है ना?
0: जी। हाँ जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगी?
1: आपको तो भी क्या, मैंने क्यों नहीं सुना।
0: हाँ जी हाँ जी, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, बहुत जो है ना पीछे से कुछ मुझे आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है। जी सामीन, तो प्रोग्राम का टाइम जो है ना बहुत कम रह गया है, टाइम इज़ 12:56 PM। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, शो अच्छा लगा होगा। और जैसे कि मैंने आज बात की ना, जैसे कि ये जो वक्त है ना, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, ये महीने होते हैं अच्छे तरीके से उनके कहते हैं ना ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उनको टाइम देने का। एक कॉलर है, जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: मैं आपकी बात करनी
0: चाहिए। हाँ जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे
2: आप? विदिशा बात कर रहे
0: हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
2: आपके शो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लगते
0: हैं। थैंक यू वेरी मच।
2: और आप मुझे खुश रहे, बहुत अच्छे।
0: अल्लाह हाफिज। हाँ जी, शो पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये टाइम जो है ना आपके पास वो वक्त है जब आप बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये नहीं बस एक घर में रहना ही बात नहीं होती, उनके साथ बैठना, उनको टाइम देना, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनका किस में इंटरेस्ट है, क्या वो करना चाहते हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, तो सिर्फ एक घर में रहना ही काफ़ी नहीं होता कि उनको वाकई में उनके साथ होना। ये ना हो कि वो अपनी हर बात जो है ना डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाके वहाँ पे पोस्ट कर रहे हों, कि जब वो देखेगा वो बंदा स्टोरी या वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने प्यारों का बहुत ख़ास ख्याल रखिए। इंशाल्लाह सांसें चलती रहीं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम शो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब
3: 101 FM।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब
4: all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: This is FM 101.
3: 101 FM.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Stay tuned to FM 101.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: Coming up next, 101 News Headlines. News.
1: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए शुरू किए गए फलाही मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत की है। वज़ारत कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियों का जायजा लिया जो रवां माह की 12 तारीख को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ पाकिस्तान की जायज और मुतनासिब कार्रवाइयों पर भारतीय वज़ारत खारजा के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया है। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल लंदन में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए है पुरअज़्म, हर बार महफूज है।

0: फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर के ट्रैक जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे, क्यों जी कोई शक है क्या?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानून।

0: मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज़ बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
1: क्यों जी, कोई शक है क्या?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: This is FM 101।
5: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
6: आज हम बयान करेंगे, पारा है 19वां, सूरह नमल है और आयत मुबारक है 54-58। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فان جیناہ وہلہ علم راتہ قدر نہ من الغابرین وام مطر فسا مطر المنظرین صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرے۔ و لوط، اور لوط کو اس قال، جب اس نے کہا کہ کیا قال قوم ہی اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ کہ کیا بے حیائی پر آتے ہو تم، ہاں کیا تم بے حیائی پر آتے ہو، یعنی بدکاری پر، فحاشہ، وانتم تبصرون सोच रहे हो तुम क्या, यानी कि यानी इस फेल की कबाहत जानते हो, या ये मैंने कि एक दूसरे के सामने बेपर्दा बाऐलान बदफेली का अरतकाब करते हो, या ये कि तुम अपने से पहले नाफरमानी करने वालों की तबाही उनके अजाब आसार देखते हो फिर भी इस तरफ बदामाली की तरफ आते हो। आइन्नाकुम लतातून रिजाला, क्या तुम मर्दों के पास मस्ती से जाते हो, शहवतन मिन दून निसाए, औरतों को छोड़कर अपनी बीवियां छोड़कर, बल अंतुम कौम तजलून, बल्कि तुम जाहिल लोग हो, यानी जाहिल लोग हो, बताई गई तुम्हारे लिए शादियां का तुम्हें इजाज़त दी गई। फमा काना जवाबा कौम ही, तो उसकी कौम का कुछ जवाब ना था, इल्ला सवाए ये अनकाल अखरजू, के बोले आला लूत, ए लूत के घराने वालों, हम तुम्हें अपनी बस्ती से अखरजू, हम तुम्हें अखरजू कर देंगे, निकाल देंगे आला लूत को, मिन करियातिकुम, अपनी बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम, ये लोग उनासुम यतताहरून, ये लोग सुथरा पंचाते हैं। फन जैनाहू, बस हमने निजात बख्शी हु उसे, वाहलहू और उसके घर वालों को, इल्लम रातहू, सवाए बस उसकी बीवी के, बुढ़िया के, कद्दर नाहा, हाँ जिसके लिए ठहरा गया था, मिनल गाबिरीन, के वो रह जाने वालों में से, यानी उसे रह जाने वालों में से बना दे। वाम तरना, और हमने एक बरसाया अलैहिम, उनके ऊपर एक फसामत और मुंजरीन, तो क्या ही बुरा बरसाव था डराए हुओं का। यानी अब ये यहाँ तुबसरून से मुराद है यहाँ देखना, तो तुम जबकि देख रहे हो फिर भी तुम ये फेल कर रहे हो, जो तुम्हारे से पहले ऐसे हो चुका है, वो सारा कुछ देखने के बाद भी तुम, तो इस तरह से इल्म रहा था, यानी उसकी बीवी जो बुढ़िया थी उसको कहा कि पीछे ही रह जाने वालों में से होगी, तो सुबह, और हुक्म भी उन्हें ये दिया कि सुबह होने से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अल्लाह का दस्तूर और कायदा ये रहा है कि जब उसने किसी कौम की तरफ अजाब भेजना होता है तो उसके नबी को पहले वहाँ से निकाल देता है, जब तक उनके नबी उनमें मौजूद हैं अल्लाह का अजाब नहीं आता। अल्लाह अपने नबियों को, पैगम्बर और रसूलों को उस बस्ती से सुबह होने से पहले पहले निकाल देता है, तो जब वो निकल जाते हैं उधर से आगे चले जाते हैं, फिर उस बस्ती पे पीछे से अजाब आता है। इतनी यानी कि अल्लाह ताला को अपने नबियों की, रसूलों की तौकीर, इज़्ज़त और मुकाम उनका अल्लाह ताला के यहाँ है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम।
5: अभी आप समाअत फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयत मुबारक का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है। इसी तरह दरस कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद हर इतवार सुबह 10 से 12 बजे बामुकाम आस्थान आलिया, फ़कीर बादशाह रेलवे स्टेशन रायविंड, नज़्द रेलवे कब्रिस्तान रायविंड लाहौर में साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दर्स देते हैं, जिसके अख्तिताम पर दुआ और इंसानियत की फलाह के लिए कुरान मजीद से इस्तगारा और रूहानी व जिस्मानी मसाइल के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह की जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे रूहानी और जिस्मानी मरीज़ जिन्हें डॉक्टर साहिबान लाइलाज करार दे चुके हों, वो मायूस इंसान यहाँ से बफसल खुदा सेहत याब होकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला।
7: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: आप सुन रहे हैं FM 101. फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया ट्विटर एंड इंस्टाग्राम FM 101 PBC. फॉलो अस ऑन फेसबुक FM 101 चैनल पाकिस्तान FM 101 हिट्स FM.
1: दिस इज FM 101.
0: कराची लाहौर इस्लामाबाद पिशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट पन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल।

0: में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक्स की में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा और चुप।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: चलो चलो।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: दिस इज FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिगारिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
3: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
5: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
2: FinTech,
1: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
2: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल एंड दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड। Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप पुलिस प्रोटेक्शन ऐप हेल्पलाइन 1043 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
2: फिनटेक,
1: हेल्थटेक। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: चलो चलो।
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुर अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम विफाकी और सूबाई वजारतों को हिदायत की है कि वो आइंदा मौसम बरसात के खतरात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करें। खवातीन के बारे में इस्लामी तआवुन तंजीम की नवीन दो रोज़ा वजारती कॉन्फ्रेंस इस माह की 12 तारीख से इस्लामाबाद में शुरू होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2026 के लिए 13 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद का अपना सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लिया है।
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूर, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्ते, यहाँ है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
4: This is FM 101.
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूर, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
4: This is FM 101.
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूर, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द
5: ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ، کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کارروائی، چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا، ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا، جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک، مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت، عقیدت اور شفقت، خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان، ہر عورت ہے با اختیار، بڑھ رہا ہے سبھی کا مان، حکومت پنجاب.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
7: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

0: On your radio dial, keep it locked.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

101 FM

0: This is FM 101, where your spirit is set free.
1: 101 FM.

Best one in the 100% power of radio. 101 FM, the voice of your choice. FM 101.

101 FM。

0: हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई चारा कर सकते हैं और न रास्ता जानते हैं।
1: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا।
0: करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ कर दे और अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है।
1: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن